आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000

0: से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनेपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में एआई, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ठीक 8 वाजता आपण ऐकू शकता हिंदी बातम्या.
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है. मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in. हर घर सूर्य
2: घर. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे. भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा. भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया. झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की. रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित. और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे. वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे. इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है. यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी. एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं. श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली.
3: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे. श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी.
5: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे. कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर.
3: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा. व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा. परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं

0: उनको नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: We have seen the comments.
3: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: Regulate the flow of foreign funds.
0: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
3: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
0: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और GSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही

0: मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
1: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए। बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जल स्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
2: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
4: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से CBI ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी CBI जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली NCR में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, FCRA पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। UPI लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर एक अमेरिकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार अपनी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की।

तो सही सही बताइए, आप में से कितनों की पुरानी यादें इस गीत के साथ जो है ताजी हो गई, और कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत सालों बाद इस गीत को सुना, और कितने लोग हैं जिन्होंने शायद पहली बार इस गीत को सुना है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, 107.1 एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। मैं हूं ममता सहगल आपके साथ, और साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर देश और दुनिया के किसी भी कोने से। भाई ये जो गीत है ये आई थी फिल्म 1992 में, आज का गुंडा राज, जो एक एक्शन क्राइम फिल्म सीरीज की फिल्म थी। चिरंजीवी और मीनाक्षी शेषाद्री ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी, और ये जो है 1991 में बनी एक तेलुगु फिल्म गैंग लीडर का रीमेक थी, जिसमें चिरंजीवी ने भी अभिनय किया था। और इतनी खूबसूरत ये फिल्म थी, इतने खूबसूरत इसके गाने थे, रवि राजा पीनी सेट्टी के डायरेक्टर थे, और अनीस बाजमी साहब ने

0: से जो है लिखा था, गुंडा राज मतलब कि गुंडों का राज होता है, तो एक्शन, गाने, रोमांस सब कुछ था इसके अंदर। एक लड़का होता है जो ईमानदार होता है, चुनौती प्रिय होता है, बहुत साहसी होता है, लेकिन बेरोजगार होता है। अब काम ना होने की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ में टाइम पास करता है, जो उस तरह पे इस तरह की स्टोरियों का जो पैटर्न चलता था। एक अलग जो है फिर हीरोइन की एंट्री हो जाती है, फिर एक विलन की एंट्री होती है, कैसे हीरो विलन को मजा चकाता है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एंड ऑफ द डे इस फिल्म के गीत सब बहुत ही मज़ेदार थे। तोता मेरे तोता ले लीजिए, लश्कारा ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे गीत थे जिसमें अभिजीत जी ने, कुमार सानू जी ने, अलका याग्निक जी ने, इन्होंने, अमित कुमार जी ने, इन्होंने जो है अपनी आवाज़ का जादू चलाया था। तो कुछ ऐसे ही पुराने ज़माने की आज हम बातें करने वाले हैं, गाने मिक्स बैग रहने वाले हैं, ढेर सारी बातें होंगी, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल तो एस जानकी की आवाज़ में ये गीत।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, three, four.

तो भाई ले रहे हैं आप भी मजा इन खूबसूरत खूबसूरत गीतों का जो कहीं हमारी भूली बिसरी यादों में कहीं ना कहीं बच के छुप के रह गए हैं। क्या ख्याल है आपका? पसंद तो आ रहे हैं, आपके मैसेजेस इस बात के गवाह हैं। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, एक बार फिर से मुंबई में, मस्त मुंबई में दिल का फसाना लेकर मैं हूँ आपके साथ आरजे ममता सहगल और 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे राइटर के जीवन की कहानी की जिनकी बनाई हुई एक जगह हमारे लिए इतनी जानी पहचानी लग गई, इतनी जानी पहचानी हो गई कि हमें ऐसा लगता था कि शायद हम वहाँ घूम कर आए हों। कल्पना का शहर था लेकिन इतना असली लगता था क्योंकि उसके लोग इतने असली थे और वो जो था ना हमारे बचपन के साथ ऐसे जुड़ गया था वो गाँव। कौन थे वो राइटर, क्या है इनकी ज़िंदगी की कहानी, कौन सा था वो गाँव और क्या था वो म्यूजिक, ना ना ना ना ना ना ना ना। कुछ याद आए तो बताइएगा मुझे भी, कुछ याद आया हो तो। फिलहाल तो आपके लिए, एक्चुअली आपके लिए मतलब हर सलमा के लिए ये गाना।

क्या बात है, मतलब कि म्यूजिक की एक ही लाइन काफी थी आपके लिए उस शख्स का नाम गेस करने के लिए जिसकी कि मैं कहानी लेकर आई हूँ। बहुत बढ़िया यार, मतलब कि ये इस हद तक हमने उस शो को प्यार किया, उस राइटर को प्यार किया कि वो हमारे जहन में बस चुका है। सिर्फ एक धुन काफी थी उन मेमोरीज को वापस लेकर आने के लिए। लवली यार, मजा ही आ गया। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद इतना सा मैं बोलूंगी, वैसे भी थोड़ी सी बेसुरी हूँ, कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन क्या बात है यार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिलीप शिवरेकर जी आपने बिल्कुल सही बताया, पंकज मोहर जी बिल्कुल सही बताया, और दीपा पालकर जी, क्या बात है यार, मतलब मजा ही आ गया। इससे पता चलता है कि उस वक्त के जो शोज आते थे, जो गीत आते थे, जो धुनें आती थी, जो संगीत आता था, वो कहाँ कहाँ तक हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है भाई, क्या बात है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही आपने जो है पहचाना। मालगुडी डेज के म्यूज़िक की मैं बात कर रही थी, मालगुडी डेज की कहानी

बात कर रही थी। जरा सोचिए 1930 के दशक का भारत, एक युवा लेखक जिसके मन में लिखने का जुनून है, और वो क्या करता है, वो अपनी टीचर की नौकरी छोड़ देता है। उसने तय किया कि वो अब अपने लिखने के सपने को पूरा करेगा। घर पर रहकर उसने लिखना शुरू किया और इसी जुनून में जन्म हुआ मालगुडी का। मालगुडी कोई सुपर हीरो की दुनिया नहीं थी, आम लोग थे, छोटी छोटी सी खुशियां थी, परेशानियां थी, सपने थे।

गजानन राउत ये जुड़े हुए हैं, रजनीकांत पाटिल जी जुड़े हुए हैं, हितेंद्र दास जी जुड़े हुए हैं, इब्राहिम जी, फिरोज सिगनपुरिया जी, विश्वास चांदोरकर जी, प्रमोद खरकनिस जी, चेतन कुमार जी, महेश भाटकर जी, वैदही जी, ये सब हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक खूबसूरत सी कविता भी आई है एज यूजल प्रणव शिंदे की तरफ से, तो ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक बेहद खूबसूरत से गीत का, बने रहिए हमारे साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।

चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं स्वागत करना चाहती हूं हमारे एक नए श्रोता का, शरद हराडे अहिल्यानगर से। थैंक यू सो मच। इन्होंने लिखा है कि वैसे तो मैं आपका रेगुलर श्रोता नहीं हूं, पर आज दिल खुश हो गया, आपसे सिर्फ आपको सुनूंगा। थैंक यू शरद जी। देखा, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लोगों से जोड़ देती हैं, और शायद ये जो राइटर थी ये ऐसे ही थे जिसने एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ दिया था। इनका नाम आर के नारायण। जी हाँ, ये इनका पूरा नाम नहीं था, जैसा मैंने बताया इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। नाम जितना लंबा, काम उससे भी बड़े, और इनके लिए हमारे मन में यादें उससे भी कहीं ज़्यादा। ये कहानी है उनके साथ उनके इस दोस्त की, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर भी थे, ग्राहम ग्रीन। उन्होंने इन्हें सलाह दी थी कि यार तुम ना अपना नाम थोड़ा छोटा कर लो और ऐसा नाम रखो जिसे कि जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए याद रखना आसान हो जाए। और फिर यही कारण था कि हमारे रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी बन गए आर के नारायण। और इसी नाम से उन्होंने साहित्य की दुनिया में एक ऐसी पहचान बनाई कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन सफलता का रास्ता इतना भी आसान नहीं था।

हर राइटर का एक ही सपना होता है कि उसकी लिखी हुई कहानियाँ, उसकी लिखी हुई किताब छप जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है अक्सर अपने सपनों को पूरा करना, लेकिन पूरा वही कर पाते हैं जो लगातार अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनकी पहली जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो प्रकाशक को पहुंचाना उनके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था। जितने भी उन्होंने सोचे थे कि मैं इन पब्लिशर्स को भेजूंगा, उनकी वो जो लिस्ट थी ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो उन्होंने अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एक अपने आखिरी पब्लिशर के पास भेजी, और अगर वो भी इसे ठुकरा देता तो क्या होता। नारायण जी ने अपने मित्र को लिखकर कहा, उसको लेटर लिखा और कहा कि ये जो है ना मेरी मैन्युस्क्रिप्ट, ये उनके पास भेज देना, और उसे पत्थरों से बांध कर जो है, अगर ये वहाँ तक नहीं पहुँचती है ना तो इसे तुम जो है ना थेम्स नदी में जो है डुबो देना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके जो दोस्त थे उन्होंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए दिया एक और राइटर ग्रैहम ग्रीन को, और वहाँ तक पहुँचने के बाद जब ग्रीन साहब ने वो किताब पढ़ी तो वो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने पब्लिशर से उनकी सिफारिश कर दी, और यहीं से आर के नारायण की साहित्यिक यात्रा को मिला एक नया मोड़, और फिर आया उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दौर, द डार्क रूम। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत।

ऐसा ही कुछ देश और दुनिया के लोगों ने कहना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, उन्हें इनकी लिखी कहानियाँ इतनी पसंद आती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनकी कहानियों में खुद को तलाश लेते थे। एक आया महत्वपूर्ण दौर इनकी ज़िंदगी का, द डार्क रूम, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। ये एक ऐसा उपन्यास था जिसमें एक दाम्पत्य रिश्ते के भीतर जो मौजूद असमानता होती है, एक दबे हुए जीवन की कहानी सामने आती है, वो उसका मेंशन था, उसका जिक्र था। लेकिन निजी जिंदगी में भी नारायण साहब बेहद कठिन दौर से गुजर रहे थे। 1937 में उनके पिता का निधन हो गया था और उसके 2 साल बाद ही उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। इस गहरे दुख का असर उनकी अगली रचना द इंग्लिश टीचर में साफ तौर पर दिखाई दिया। उनकी कई रचनाओं की तरह ये उपन्यास भी उनके जीवन से काफी हद तक जुड़ा हुआ था, यानी जो दर्द उन्होंने जिया उन्हें उन्होंने शब्दों में ढाल दिया। और फिर आया वो नाम जिसे आर के नारायणन के नाम को घर घर पहुंचा दिया, मालगुडी डेज। 1940 के दशक में प्रकाशित इन कहानियों में मालगुडी के आम लोगों की असाधारण रूप से दिलचस्प जिंदगियां थी। और जब 1980 के दशक में मालगुडी डेज पर बने टेलीविजन सीरीज जो है वो दर्शकों के सामने आई, तो उस दौर के बच्चों के लिए मालगुडी सिर्फ एक किताब का शहर नहीं रहा, वो एक ऐसी जगह बन गया जहाँ जाना सबको अच्छा लगता था, जहाँ हर कोई रहना चाहता था, जहाँ कोई उड़ने वाला सुपर हीरो नहीं था, बस हम और आपके जैसे लोग थे। और शायद इसी सादगी से उसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी वो सामने आती थी। उन्होंने सिर्फ मालगुडी डेज ही नहीं लिखा था, बल्कि द फिनेंशियल एक्सपर्ट, मिस्टर संपत, वेटिंग फॉर महात्मा और 1958 में आया उनका एक बेहद प्रसिद्ध उपन्यास जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी। करेंगे उसके बारे में बात, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अगले घंटे ठीक 10 बजे होंगे समाचार हमारे मुंबई केंद्र से, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं औरतों से जुड़ी कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में और कुछ मिथ्स को हम क्लियर करने वाले हैं। बात करेंगे हम डॉक्टर प्रिया वोरा से, तो आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये जानकारियाँ आपके लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी हो सकती है।

बात करते हैं उस उपन्यास की जिस पर एक फिल्म भी बनी थी और काफ़ी काफ़ी हिट हुई थी। देवानंद साहब ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी और एसडी बर्मन साहब का संगीत जिसने इस फिल्म के हर गीत को यादगार बना दिया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म उपन्यास द गाइड की, एक टूर गाइड की कहानी जो परिस्थितियों के चलते धीरे धीरे एक आध्यात्मिक गुरु बन जाता है और फिर आती है इसके ऊपर एक फिल्म जो ऐसा कहा जाता है कि नारायण साहब को इस फिल्म का जो रूपांतरण था इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन उनकी किताबें आज भी अपने जो लिसनर जो अपने रीडर्स हैं उनके बीच में आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं। शायद इनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बहुत बड़े बड़े शब्दों का सहारा नहीं लिया। छोटे शहर,

छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी कहानियां लिखी और उन्हीं में जिंदगी की बड़ी सच्चाइयां ढूंढ ली। 1980 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। वहां उन्होंने बच्चों की शिक्षा को लेकर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बच्चों के पास खेलने और सपने देखने की जगह ना बचे, ऐसी कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पूरा हक है सपने देखने का और खुल के खेलने का। मई 2001 में चेन्नई में 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। लेखक चले जाते हैं, उनकी बनाई दुनिया कहीं नहीं जाती। मालगुडी आज भी वही है, अपनी गलियों में, अपने किरदारों के साथ। और शायद यही किसी लेखक की सबसे बड़ी सफलता है कि उसकी कहानी खत्म होने के बाद भी उसकी कहानियां खत्म नहीं होती और हमारी दुनिया में उनकी कहानियां हमेशा चलती रहती हैं। फिलहाल मस्त मुंबई में, मुंबई में दिल का फसाना, मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, क्योंकि अगले घंटे जैसा मैंने आपसे कहा कि करूंगी एक खास विषय पर बातचीत औरतों के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर प्रिया वोरा से। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक 10 बजे होंगे समाचार, समाचारों के उस पार मेरी और आपकी एक खूबसूरत सी मुलाकात, और इस वक्त आपके लिए ये गीत।

Thank you.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं, आइए नजर डालते हैं इस वक्त के समाचारों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राओं के साथ 587 PhD शोधार्थी शामिल

0: हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 11 मुंबई में राष्ट्रीय शहरी विकास वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे निगम के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। समाचारों में आगे है, मुंबई में कल शाम 2 दिवसीय ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन हुआ। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदार देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। समाचारों के अंत में खेल जगत से समाचार। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने 23.5 अंक हासिल कर यह जीत एक राउंड पहले ही पक्की कर ली। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। आप बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो की मुंबई प्रसारण सेवा के साथ।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक 107.1 एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव हमारे मुंबई स्टूडियो से। नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत है। और नमस्ते भारत में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ महिलाओं के जीवन से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य की बातों की, कुछ मिथ्स की और कुछ फैक्ट्स की, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रिया वोरा के साथ, जो है कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई मेनोपॉज़ सोसाइटी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ मेडिकल वुमेन इन इंडिया मुंबई ब्रांच, एंड को-फाउंडर ऑफ द साइक्लिस्टास मुंबई डायनामिक साइक्लिंग ग्रुप हु पेडल फॉर अ चेंज, मैनेजिंग कमेटी मेंबर ऑफ द मुंबई ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी। तो इनके साथ हम बात करने वाले हैं बस अब से कुछ ही देर में। अगर आपके पास भी कुछ सवाल हो अपनी हेल्थ से जुड़े हुए, अपनी बहन की, अपनी वाइफ की, अपनी मॉम की, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सवाल उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी।

और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर प्रिया, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर प्रिया। ओह, लगता है हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं दोबारा से उनसे कनेक्ट करती हूँ और फिर आपसे बात करूँगी मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, जहाँ पर महिलाओं से जुड़ी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मिथ होती हैं, जो कहीं ना कहीं ये गलतफहमी होती है। हम उन गलतफहमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: और वायदे के अनुसार इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया वोरा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू ममता।
4: सबसे पहले तो इतनी सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, उनको कभी आराम मिलता नहीं है। तो प्रिया, अभी हाल ही में जो है ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन वीक

0: हमारा हुआ है खत्म, लेकिन इस बारे में जो है मैं आपसे आज बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके साथ बात करने का मौका मुझे आज मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि इस मौके का मैं फायदा उठाऊं और आपसे जानना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन, इसके फायदे बच्चों के लिए क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या माएं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं क्या उनके लिए भी इसका कोई फायदा होता है?
1: गुड मॉर्निंग ममता. डेफिनेटली इट इज इम्पॉर्टेंट. वी ऑल नो के जब ब्रेस्ट फीडिंग माँ करती है तो बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ती है और इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बट देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस इवन फॉर अ मदर. पहले तो इसका यूट्रस जो इन्वोल्यूशन हम लोग बोलते हैं पोस्ट डिलीवरी, इट हेल्प्स फॉर द श्रिंकिंग ऑफ द यूट्रस. ऑल्सो द ब्लीडिंग इज कंट्रोल्ड. So there will be lesser bleeding in patients who have do the breastfeeding properly. Also, सबसे महत्व का या सबसे important चीज है कि weight reduction. जैसे जो भी हमारा weight बढ़ा है तो during the pregnancy, जब वो breastfeed करती है तो ये weight घटने में भी बहुत मदद होता है, क्योंकि lot of calories are getting burned when we are breastfeeding. Also, comorbidities or, you know, medical issues like diabetes का risk होता है तो ये कम हो जाता है जब हम लोग breastfeed करते हैं. Heart disease, blood pressure, ये सभी illnesses कम हो जाते हैं जब lady हमेशा जो breastfeeding करती है. इसके बहुत से advantages हैं. Also, the risk of cancers like breast cancer and ovarian cancers, there is a lesser risk in patients who do the breastfeeding. Also, it helps to reduce the depression and establishes a very emotional bond with the baby because of the skin-to-skin contact, and reduces even the stress in the mother. So these are all the other advantages we need to keep in mind.
0: प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अगर जो है माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ में बहुत कमज़ोरी आ जाती है, उसका कैल्शियम गिर जाता है, उसका जो शरीर है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है. इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है?
1: देखिए, जैसे कमज़ोरी आती है, पर वी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इवन इन द एंटीनेटल पीरियड हम लोग कमज़ोरी के लिए विटामिन और आयरन की सप्लीमेंट्स देते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं. और इवन द WHO या वेरियस गाइडलाइंस ऑल से दैट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क दैट इज फॉर द फर्स्ट 6 months आफ्टर द बेबी इज बॉर्न इज कंपल्सरी और इट इज द बेस्ट. एंड सो वी हैव टू कीप इन माइंड के हमको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देनी ही चाहिए जब पेशेंट ब्रेस्ट फीड कर रही है, या उनका मिल्क इनटेक या कैल्शियम के फूड्स विच आर रिच इन फूड्स दे नीड टू टेक ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग टाइम. और हम लोग कैल्शियम का डोज भी एटलीस्ट 1000 मिलीग्राम पर डे ड्यूरिंग द फेज ऑफ लैक्टेशन हम लोग प्रेफर करते हैं. तो अगर माँ पौष्टिक आहार खाती है, अच्छे कैल्शियम के सप्लीमेंट लेती है और दूध का भी इंटेक करती है तो मुझे नहीं लगता है कि इतने ही कमजोरी आ जाएगी. इफ दे करेक्ट ऑल दीज मेजर्स देन देयर शुडंट बी अ प्रॉब्लम.
0: थैंक यू प्रिया, आपसे कुछ और सवाल हम करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से गीत का हो रहा है. आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए और हम इस गीत के उस पार आपसे कुछ और बातें जो हैं इस बारे में जानना चाहेंगे, और कुछ औरतों की सेहत से जुड़ी बातें हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन बातों का, किस तरह का ध्यान जो है वो हमें रखना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, स्पेशली आफ्टर 40s हमें किस तरह अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए. प्रिया, बने रहिए हमारे साथ. तो ये है डॉक्टर प्रिया वोरा जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और आपके सवाल भी अगर कुछ हो तो हम इन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. वक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना वक्त मिलता है. फिलहाल तो जो वक्त है वो वक्त है एक खूबसूरत से गीत का. गीत के उस पार बातें बेशुमार, बने रहिए हमारे साथ.

0: और हमारे साथ इस वक्त भी फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया, जिनसे हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन के बारे में। तो आइए कुछ और सवाल उनसे करते हैं। प्रिया, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू ममता फॉर हैविंग मी।
0: प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बच्चे को कब तक माँ के दूध की जरूरत होती है, कितने टाइम तक उसे जो है माँ का दूध पिलाना जरूरी होता है?
1: एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टिल एटलीस्ट द 6 months ऑफ एज, मीन्स द बेबी इज ओनली ऑन द मदर्स मिल्क एंड नो अदर फूड एक्सेट्रा गिवन। But after the 4 months of age, we can start only when the pediatrician will recommend the weaning substances, जैसे दूसरे यू नो दाल खिचड़ी ये सब दूसरे पदार्थ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर द 4 to 6 months ऑफ एज। बट पूरा माँ का दूध 6 months तो डेफिनेटली कंपल्सरी है, इट शुड बी गिवन। एंड मेनी ऑफ अस वी टेंड टू ब्रेस्ट फीड इवन टिल द एज ऑफ 2 years. So, but that is up to you all. But at 2 years is a good time that the mother is breastfeeding the babies.
0: प्रिया, हमने कई बार देखा है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माएं 3, 4 और कभी कभी 5 साल तक भी ब्रेस्ट फीड कराती हैं। बच्चे नर्सरी तक जाना शुरू कर देते हैं तब भी वो कई बार ब्रेस्ट फीड माएं करा रही होती हैं, ये कहाँ तक सही है?
1: देखिए ममता, नॉर्मली वी रिकमेंड अप टिल 2 years, इट इज अ गुड टाइम। और अगर हम लोग जैसे, बट इट इज नॉट अ फिक्स्ड गाइडलाइन पर से, बट अगर लोग जैसे ज्यादा 2 साल के बाद भी पिलाते रहते हैं तो थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेंसी इन द बेबी बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द

0: other foods. So only on breast milk, the baby may become little kamzor than even anemias, because breast milk has lower iron content. So iron deficiency anemia wo bachon mein paya jata hai. Also dental issues are there, like there could be caries because of the milk they are drinking in the night. Alignment of the teeth also may be affected. Phir bache ki appetite bhi dusre cheezon ke liye kam ho jati hai. क्योंकि माँ का दूध ही वो पूरा दिन अगर पिएगा तो फिर एपिटाइट विल डेफिनेटली रिड्यूस. मदर में भी फिर ज्यादा कमजोरी आ सकती है, बिकॉज 3 इयर्स 4 इयर्स इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. ऑल्सो स्लीप उनका डिप्रिवेशन हो सकता है. तो ये सब चीजें हमें मन यू नो वी हैव टू कीप दिस ऑल्सो इन माइंड. आइडियल इज 4 to 6 मंथ्स एंड बियॉन्ड दैट टिल 2 इयर्स इज ओके.
1: प्रिया, आजकल कई बार देखा गया है कि जो औरतें हैं वो 35-40 की उम्र में जाकर जो है माँ बनती हैं, तो क्या इस उम्र में भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं माँ, या इसमें माँ को कुछ दिक्कतें आती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर?
0: तो डेफिनेटली इफ द पेशेंट इज एल्डरली और शी इज डिलीवर्ड, यू नो, बिकॉज ऑफ IVF कंसेप्शन नाउडेज वी हैव लेडीज हु आर बिकमिंग मदर्स एट अ मच लेटर एज. So it is not a contraindication, balke they should also try and breastfeed. Even whatever amount they have, should breastfeed the baby. But it is seen sometimes jab elderly log maa bante hai, to tabhi wo milk production thoda lower side pe hota hai. To unke liye hum log ko different supplements, satavri or different supplements are there where they can increase even the liquid intake in their diet and have a better production. Also, initiation of lactation. Jaise wo thoda der se doodh banne lagta hai. Also, they could be having higher complications, like, you know, if there's hypertension or BP wagre, to unme thoda milk production bhi affect ho sakta hai. Unhe later aane lagta hai. कभी सी सेक्शन हुए हैं तो उन्हें भी डिलेड इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन हो सकता है. या अगर वो लोग कोई कोई मेडिकेशन ले रहे तो हमें देखना चाहिए कि वी हैव टू चेंज टू अ सेफर ऑल्टरनेटिव, स्पेशली व्हेन दे आर ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज दैट इज ऑल द मेडिकेशन शुड नॉट गो इन टू द बेबी वाया द ब्रेस्ट मिल्क. सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन अ एल्डरली लेडी इज गोइंग टू ब्रेस्ट फीड.
1: प्रिया, हमारे एक लिसनर हैं फिरोज सिकनपुरिया जी, जो मैमोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं. तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये मैमोग्राफी स्क्रीनिंग क्या होती है और क्यों करवानी चाहिए.
0: आजकल मैमोग्राफी एक टेस्ट है, इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड देर आर मेनी एडवांसेस इन द मैमोग्राफी. देर इज नाउ AI इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड एंड देर इज ब्रेस्ट mammography, which all of us should do after the age of 40, and if there is a high risk in the family, या अगर mother को breast cancer हुआ है या उनके first degree relative को sister को हुआ है तो उन्हें जल्दी करनी चाहिए. almost 35 के you can also start, and it needs to be done either every 2 yearly. Usually is the screening time we tell the patients to advise, so we can pick up early detection of breast lump, early detection of a breast cancer. Because nowadays we do know that prevention is always better than cure. So agar breast cancer ke jab initial stage mein ye pakad mein aata hai to uske treatments kafi hai, advances hai treatment mein, aur it is very important to detect it at a very early stage.
1: प्रिया, हमारी बहुत सारे लिसनर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि 40 की उम्र के बाद खासतर की महिलाओं को अपने लिए किस तरह का क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कई लोगों का पेरीमेनोपॉज या प्री मेनोपॉज पीरियड जो होता है वो शुरू हो जाता है, कई लोगों का अर्ली मेनोपॉज भी हो जाता है. तो औरतों को किस तरह अपना ध्यान रखना चाहिए?
0: आफ्टर द एज ऑफ 40, one that we all need to know ke lifestyle modifications bahut important hai. Achha nutrition palo, achhi sleep patterns establish kijiye. Also exercise regime is very important. You need to do a little physical activity every single day to keep your body in shape. Or after 40 we do recommend lot of health checkups, okay, like certain simple blood tests need to be

0: done. Your sugars need to be done. Your lipid profiles also need to be done. And as a gynecologist, I do recommend that they should do a ultrasonography at least of the uterus, ovaries. So we know if a mammography after 40 at least should be recommended. We also do the cervical screening test, which is the Pap test, which I do recommend all my patients after the age of 40. And agar kisi ko DEXA, that is the bone scans karne hai, bone test karna hai, ke usme bone ki kami, osteoporosis hai, yeah, you know, for the bone health, then that also should be recommended. So I think basic blood tests, good fitness, and these various investigations, I think, is the fitness mantra today.
1: प्रिया, चलते चलते हमारी एक लिसनर हैं दीपा पालकर जी, उनका सवाल है कि आमतौर पे लोग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे अपने खाने को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो एक मदर की डाइट में क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं?
0: जब ब्रेस्ट फीडिंग वो करवा रही है तो बैलेंस डाइट इज इम्पॉर्टेंट, अ टोटल बैलेंस डाइट दैट शी शुड हैव अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. And she should have even dairy products is better, or at least calcium containing products. The requirement of the calcium per day is at least 1000 milligram per day. So what we give antenatally as one tablet, then we try to step up the dose during the first 4 to 6 months. She needs to take her iron and calcium supplements even after the delivery in the phase of lactation. And lot means at least 2 to 3 glasses of milk. They need to increase the liquid content in their diet so that they can establish a good milk or good lactation can be established in these patients.
1: प्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी बातें हमसे की सुबह सुबह, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, और हमारे लिसनर्स को डेफिनेटली आपकी बातों से बहुत बहुत फायदा होगा. प्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
0: Thank you very much. I hope the audience has understood a lot of the questions which have been answered. थैंक यू ममता.
1: थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच. तो ये थी डॉक्टर प्रिया वोरा हमारे साथ, जो एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई मेनोपॉज सोसाइटी भी हैं, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल वुमेन इन इंडिया हैं मुंबई ब्रांच की. काफ़ी एक्टिव रहती हैं ये सोशल सर्विसेज में भी, और जो है वुमेन हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हैं. सो आपके जो सवाल थे मैंने उन तक पहुँचाने की कोशिश की. अगर अभी आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि इन तक आपके सवाल पहुंचाकर मैं इनसे आपके सवालों के जवाब लेकर आऊं. फिलहाल वक्त एक खूबसूरत से गीत का. गीत के उस पार बातें बेशुमार. बने रहिए हमारे साथ 107.1 एफएम रेनबो पर, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से. साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर, बिल्कुल लाइव.

प्रेम की नैया पार लगे ना लगे, लेकिन हाँ जिंदगी की नैया को पार लगाने के लिए बहुत जरूरी है सपने देखना, उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिशें करना। उन कोशिशों में अगर हार जाएं तो थककर बैठना नहीं, बल्कि और दुगनी तिकनी कोशिश करना और बस जिंदगी को खूबसूरती के साथ जीते जाना। अपनों का ख्याल रखना, अपनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ला के रखना, अपनों के साथ वक्त बिताना, क्योंकि ये वक्त जो है ना वो बहुत बेवफा होता है और ये कब हाथों से छूट जाए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए और उन्हें जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दीजिए जो है आपका अपना वक्त। 107.1 FM रेनबो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर बिल्कुल लाइव। तो रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ठीक 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में और समाचारों के उस पार आपके साथ होंगी अनीता लेकर कार्यक्रम ब्रेक फ्री। मेरी और आपकी अगली मुलाकात तक के लिए आपको खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और हमेशा अपनों का ख्याल रखना है। और साथ ही साथ उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं और जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक पाटिल जी, फिरोज सिगनपुरिया जी, पंकज मोहर जी, विनीत घटोल जी, दीपा पालकर जी, रजनीकांत पाटिल जी, प्राची शिंदे जी, श्रेय राउत जी, मिलेश गजानन राउत जी, सुनील पाठक जी, ओमकार काटकर जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, प्रणव शिंदे जी, आकांक्षा मनोज सिन्हा जी, अजय सखारे जी, श्रीधर मुराजकर जी, भारती अणी, दुर्गेश नागनपुरे जी, बाबल सुरे जी, अगर आपका नाम लेने में कुछ छोटी मोटी गलती हो गई है, शरद हरारे जी, इब्राहिम जी, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, सरोज पाटिल जी, आदर्श कन्नौजिया जी, अंजू जी अंधेरी से, बाबा दादर, दत्तात्रेय आदत जी, इनका नाम है दिलीप शिवरेकर जी, हितेंद्र दास जी, विश्वास चांदोरकर जी, प्रमोद खरखनिस जी, चेतन कुमार जी, महेश भाटकर जी, वैदेही जी, आर्यन सूर्य सोमवंशी जी, सुरेश बावकर जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल चाहूंगी आपसे इजाजत, छोड़े जा रही हूं आपको कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। गीतों के उस पार होंगे समाचार, बने रहिए हमारे साथ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: News on AIR mobile app और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM Rainbow चैनल. प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे. इस दौरान वे निगम के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे. भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क बना रहेगा. व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम एमएसआरटीसी ने गणेशोत्सव के दौरान कोंकण क्षेत्र में 5,220 अतिरिक्त बस सेवाएं उपलब्ध करने का निर्णय लिया है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये विशेष बस सेवाएं 7 से 25 सितंबर तक संचालित की जाएंगी. और अंत में राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है. इस अवसर पर पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए.

जी हाँ, कार्यक्रम ब्रेक फ्री लेके मैं आई हूँ। मैं यानी आरजे अनीता। जी हाँ, शायद आवाज से आपने पहचान ली होगी। तो आज कौन सी बातें करेंगे, चलिए पहले गीत तो सुन ले और शायद उसी से आपको अंदाजा लग जाए।

जी हाँ, ब्रेक फ्री में हम बातें करते हैं कि किस तरह हम ब्रेक फ्री कर सकते हैं, यानी खुद ही बनाए हुए कुछ बंधन, कुछ नियम। लेकिन उससे पहले गीत के बारे में कुछ कह दूं। उसमें तो कहा गया था कि आप अगर दिन को रात कहेंगे तो हम वो भी कह देंगे, लेकिन भाई दिमाग जो है इजाज़त नहीं दे रहा है इस बात की। तो चलिए थोड़ा सा संतुलन बनाए रखते हैं और करते हैं ब्रेक फ्री में बातें डिजिटल डिटॉक्स की। जी हाँ, कितनी अजीब बात है कि जिस यंत्र को हमने जैसे अपने शरीर का एक अभिन्न अंग बना लिया है और अपने खाने की मेज तक उसे जगह दे दी है, आज उसी से कुछ देर के लिए ही मुक्ति पाने के लिए हम उपाय ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, सोचिए इसके बारे में और जरा सा

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours।

जी हाँ, कार्यक्रम ब्रेक फ्री, मैं हूँ आज आपके साथ अनीता, और बातें हो रही हैं कुछ आपकी कुछ हमारी, और कुल मिला के कुछ एक ऐसे यंत्र की जिसने मानो हमें पूरी तरह से जकड़ लिया है, घेर लिया है। कई बार ऐसा होता है कि जिस प्राणी को हम ही जन्म देते हैं, उसे आकार देते हैं, वो हमें ही निगलने की कोशिश करता है, और शायद वो तभी होता है जब हम उसे होने देते हैं। और डिजिटल डिटॉक्स भी तो वही है, जिस मोबाइल को हमने ईजाद किया, जिसका अब उससे दूर भागने के कुछ कुछ उपाय हम लोग ढूंढने लगे हैं, चाहे थोड़ी ही देर के लिए सही। और इन स्क्रीन्स और गैजेट से दूर रहने के लिए आप क्या उपाय करते हैं, आप किस तरह के नुस्खे अपनाते हैं, उसकी बात हमसे ज़रूर साझा करिएगा। और ये भी विडंबना है ना कि मैं कह रही हूँ व्हाट्सएप कीजिएगा, और एक और बात हो रही है डिजिटल डिटॉक्स की। जी हाँ, बिल्कुल विडंबना है, क्योंकि हम इस तरह से जुड़ चुके हैं इस माध्यम से और इस यंत्र से, लेकिन कहाँ पर थोड़ा सा विराम ले और कहाँ पर इससे चिपके रहें, ये खैर हर किसी को तय करना है, लेकिन ये बात तय है कि डिटॉक्स ज़रूरी है।

जी हाँ, आज जब डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रही है, बेहद खुशी के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे कई सारे लिसनर्स ये सुझा रहे हैं कि हम कैसे खुद को डिटॉक्स कर सकते हैं। और हमारी एक नियमित श्रोता डॉक्टर अंजू, जो एक रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं, वो अंधेरी से लिख रही हैं हमें कि सीनियर सिटीजन्स का उनका एक ग्रुप है जो सोसाइटी के लॉबी में बैठते हैं और आपस में बतियाते हैं, हाउजी खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं हर शाम 2 घंटों के लिए। जी हाँ, ये बात जो है यही तो है जो हमें आपस में जोड़े रखता है, क्योंकि हम मोबाइल के द्वारा जितने जुड़ रहे हैं उतने ही विडंबना है कि दूर होते जा रहे हैं। और कुछ का कहना है कि जब वे लंबे टूर पर जाते हैं तो वो अपना मोबाइल साथ में नहीं ले जाते हैं। जी हाँ, ये भी एक हो सकता है, लेकिन सबकी अलग अलग मजबूरियां होती हैं और ये शायद सब नहीं कर पाते होंगे। बहरहाल, और भी जो हमारे सुझाव आ रहे हैं श्रोताओं के, वो जरूर पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा गीत।

हमारे कई सारे श्रोताओं ने हमें सुझाया है कि किस तरह वे मोबाइल से दूर रहते हैं, और ये जो बात सभी कह रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है, वो कहते हैं कि खाने के मेज पर जो है या खाते वक्त मोबाइल को दूर रखते हैं। जी हाँ, ये हम में से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आप अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में भी चले जाइए तो आप देखेंगे कि लोगों का ध्यान फोन पर रहता है जब तक कि खाना नहीं आता, और खाना आ जाता है तो एक हाथ में फोन और एक हाथ से निवाला मुंह में जा रहा होता है। यानी किस कदर हम लोग इससे जुड़ चुके हैं, एक लत सी लग चुकी है, और खाना

स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। मैं हूं आज आपके साथ अनीता और बातें हो रही हैं डिजिटल डिटॉक्स की। हमारी एक श्रोता है जिन्होंने बहुत सुंदर एक कविता भेजी है। इनका नाम प्राची शिंदे है और इसके रचयिता कौन है इसका तो उन्होंने जिक्र किया नहीं, लेकिन कविता मैं पढ़े देती हूँ। शायद ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, प्रासंगिक है ये कविता। हाथों में है दुनिया सिमटी पर सुना है मन का मीत, इस कांच के मोबाइल ने छीना हमसे सारा संगीत। रख दो इसको अब ताक पर, अपनों को गले लगा लो तुम, ये स्क्रीन का काला जादू जीवन न दे पाएगा रीत। उंगलियां थकी न कभी न थकी ये आंखें मेरी, एक लत ऐसी लगी कि हर खुशी से दूरी है मेरी। आज ही ठान लो यह बात, फोन को कहेंगे अलविदा, अपनों की हंसी से महक उठेगी यह सुनी सी बगिया मेरी। जी हाँ प्राची जी, वैसे अलविदा कहना शायद मुश्किल होगा और इस बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये अब एक ज़रूरत की चीज़, जैसे नेसेसरी ईविल कहते हैं ना, वो बन गया है। लेकिन हाँ, कुछ दूर के लिए, कुछ देर के लिए और कुछ दूर तक

हम इसे रख ही सकते हैं कुछ दूर, और कुछ जगहों से दूर, यानी मेज़ पर, खाने की मेज़ पर, या फिर सोते समय अपने बिस्तर से दूर रखें इसको। और जब आप मानो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या किताब पढ़ रहे हो, तब भी आपकी नज़र उस पर ही रहती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही ये भी कहूँ कि कुछ ऐसे वक्त होते हैं जहाँ हम वाकई एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं हम, और लिफ्ट में आने जाने में भी कभी कभी एक दो मिनट लग जाते हैं, और उसमें भी आप देखते हैं लोग गर्दन झुकाए मोबाइल पे जैसे उंगलियों को नचाते रहते हैं, और मानो बचते हैं एक दूसरे से बात करने से, या कतराते हैं, या बस किसी तरह निकल जाना चाहते हैं। तो ये बात मैंने बहुत देखा है इसको, और मुमकिन है आपने भी इसे नोटिस किया हो। तो क्यों ना लिफ्ट में कम से कम अगर कोई दोस्त या कोई पहचान वाला मिल जाए तो मुस्कुरा दे और कुछ हंसी मजाक कर ले। बहरहाल ये गीत फिल्म वंदना का, जो शायद कम ही बजता है लेकिन है बड़ा खूबसूरत।

जी हाँ, और जो प्रतिक्रियाएं और सुझाव आ रहे हैं हमारे एक और श्रोता राकेश माथुर जी, जो हमें पुणे से लगातार और नियमित रूप से सुनते हैं, वो कहते हैं कि उनके कुछ उपाय हैं। डाइनिंग टेबल पर नो मोबाइल, जी हाँ ये बात हमने भी कही। बेड पर जाने के बाद नो मोबाइल और बेड से मोबाइल को दूर रखकर सोना, जी हाँ बिल्कुल। सुबह उठने के बाद फ्रेश होकर व्यायाम और योग करने और परिवार के साथ चाय आदि पीने के बाद ही मोबाइल यूज़ करना। ये बात शायद जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जो छोटे हैं, उन पे शायद लागू करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार बस आ रही है स्कूल की, उस पे स्कूल के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, ना चाहते हुए भी आपको मोबाइल देखना ही पड़ता है। नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस ऑफ करना, जी हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी है। या फिर अब मोबाइल में भी तो इस तरह के व्हाट्सएप ही देख लीजिए, आप आर्काइव कर सकते हैं कई सारे चैट्स, और जब वाकई में आपके पास वक्त हो और या फिर आपको लगे कि ज़रूरी है एक आध बार कभी देख लिया करें। और इन पर्सन यानी प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताना और मनोरंजन के लिए, और ये मनोरंजन की बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने कहा है इसको, कि आप साथ मिले, घूमे फिरे, बैठे, चाय पिए, जी हाँ ये भी शायद उन लोगों के लिए जो रिटायर हुए हैं, लेकिन कई बार जो कामकाजी लोग हैं और मुंबई जैसे शहर में वक्त इस तरह का निकालना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ जब भी आप ऑफिस में भी मिले किसी दोस्त से तो मोबाइल को दूर रखें। बहरहाल वक्त हो चला है ब्रेक फ्री को समाप्ति की ओर ले जाने का, और छोड़े जाती हूँ इस गीत के साथ, फिल्म लाल पत्थर का गीत। और अगर आपने गौर किया होगा आज की जितने भी गीत बजे अलग अलग संगीतकारों के 1970 के दशक के गीत मैंने बजाने की कोशिश की, कुछ कम सुने और कुछ प्रचलित। बहरहाल छोड़े जाती हूँ इस गीत के साथ, और 12 बजे समाचार होंगे और उसके बाद होगा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। प्रस्तुत है इस वक्त के समाचार। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे निगम के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। सम्मेलन का आयोजन BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस से पहले बम विस्फोट की धमकी मिली है, इसे लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इसमें मेयर कार्यालय, मुंबई मेट्रो, स्कूल कॉलेज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाने की बात कही गई है। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल ईमेल भेजने वाले का पता लगा रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा में ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। यह देश में आभा समर्थित डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।

जी हाँ, सुंदर सी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम म्यूजिक कैफे की शुरुआत करने के पीछे मेरे दो मकसद थे। एक तो भगवान का नाम तो किसी भी शुभ काम से पहले लेना ही चाहिए, और दूसरा, अगर आपको याद होगा कि पिछले बार म्यूजिक कैफे में मैंने कुछ ऐसे गायक कलाकारों के गीत जिन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत अधिक गीतों को अपनी आवाज नहीं दी है उनको शुमार किया था, और ऐसे गायक कलाकार हैं जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अगर गिनती करें तो गीत बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और इसी के तहत ये गीत चुना गया। पुष्पा पगधरे जी की आवाज़ थी सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ के साथ इस गीत में, और अगला जो गीत है उसमें एक अलग ही आवाज़ और एक अलग ही अंदाज़ और बीट और रिदम बिल्कुल अलग, तो मजा लीजिए। और मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे ये आवाज किसकी है।

या ये फिल्म थी हीरो और गायिका रेशमा, कईयों ने पहचान लिया और गौर किया होगा कि इसमें जो फ्लूट का वो पीस है वो कई बार बजता है फिल्म में और मानो एक पहचान सी है इस फिल्म के संगीत की। अब चलेंगे एक और अलग आवाज़ की ओर और इन्होंने एक तरह से शादी वाले गीत और फोक वाले उस टच वाले गीत को बहुत अपनी आवाज़ दी, बहुत यानी जिस तरह के उन्होंने गीत गाए उसमें उस तरह के गीत हैं। तो लीजिए पहचानिए उनकी आवाज़, ये गाना तो खैर लाजवाब है ही।

जी, पहचान लिया क्या? पामेला चोपड़ा जी की आवाज, यश चोपड़ा जी की धर्मपत्नी, और इन्होंने कई यशराज फिल्म्स के जो गीत हैं वो गाए हैं, खासकर जो शादी ब्याह के मौके वाले फोक टच वाले जो गीत हैं उन्हें अपनी आवाज दी है। आप टटोलिए अपने अपनी याददाश्त को कि और कौन से गीत उन्होंने गाए होंगे। फिल्म चांदनी का ये बड़ा ही सुंदर गीत, जो फिर से उस दौर में बहुत बजा करता था शादी ब्याह के मौके पर संगीत के दौरान। बहरहाल, एक और अलग आवाज अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, और इन्होंने भी बहुत कम ही गीत गाए हैं लेकिन आवाज बिल्कुल अलग।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: कार्यक्रम म्यूजिक कैफे, आप मेरे साथ यानी अनीता के साथ हैं और आज उन कलाकारों, गायक कलाकारों के गीत मैं सुनवा रही हूं जिन्होंने हिंदी फिल्मों में कम ही गीत गाए, लेकिन इस तरह के गीत गाए कि वो मानो उससे उनकी पहचान सी जुड़ गई। और अगला जो अभी तक आपने जो आवाजें सुनी, अगर आप देख लें, एक तो मैंने बजाया अंकुश फिल्म का गीत जिसमें कि पुष्पा पगधरे का की आवाज़ थी, फिर रेमो फर्नांडिस, उसके बाद रेशमा, पामेला चोपड़ा, और उसके बाद जो आवाज़ अभी आपने सुनी उषा उत्थुप जी की आवाज़। जी हाँ, एक बुलंद और अलग तरह का टेक्सचर लिया हुआ, और ये आवाज़ मतलब ऐसी आवाज़ है कि आप बिल्कुल कोई गलती नहीं कर सकते इसे पहचानने में। बहरहाल एक और आवाज, और ये ज्यादा मतलब मेरे ख्याल से शायद यही एक गीत है जिन्होंने जिसे इन्होंने गाया है हिंदी फिल्मों में। अगर आपको और कोई गीत मालूम हो तो जरूर बताइएगा, नाम गीत के बाद बताऊंगी, और गीत अपने आप में बहुत खूबसूरत है।

जी हाँ, 1942 अ लव स्टोरी का ये था नगमा। और अगर आपने गौर किया होगा, जिस शेर के साथ इस गीत की शुरुआत होती है, वो दरअसल फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत ही मकबूल शेर है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। आवाज़, जी हाँ, आवाज़ शिवाजी चट्टोपाध्याय की, और कुछ कुछ हेमंत कुमार साहब की आवाज़ से। क्या आपको नहीं लगा कि मिलती जुलती है इनकी आवाज़? खैर, अगले गीत की, और या यूँ कहें अगले आवाज़ की ओर, अगली आवाज़ की ओर बढ़ते हैं। और मौसम को देखते हुए ये गीत बहुत सटीक, पहचानिए कि जो फीमेल वॉइस है वो किसकी है।

फिल्म भूमिका का ये गीत और आवाज़ भूपेंद्र सिंह के साथ जो आवाज़ आपने सुनी, फीमेल आवाज़ प्रीति सागर जी की, और कई सारे श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं। बहरहाल एक और आवाज़ फीमेल आवाज़ की ओर मुड़ते हैं, रुक करते हैं यहाँ पर। बताऊंगी कि शायद आपने गौर किया होगा, फिल्म चांदनी के एक गीत में उनका बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वैसे जो मुख्य गीत गा रहे हैं वो गायक कोई और हैं, और पीछे वो गुनगुनाती हुई उनकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस गीत में उनकी आवाज़ पूरी तरह से आपको सुनाई देगी। पहचानिए, और शायद फिल्म का नाम भी अगर आप जानते हों तो ज़रूर बताएं।

यह फिल्म काश का ये गीत और आवाज जो किशोर कुमार के साथ जो आवाज आपको सुनाई देती है वो है अनुपमा देशपांडे जी की आवाज। और फिल्म चांदनी के गीत में अगर आपने गौर किया होगा, लगी आज सावन की फिर वो झड़िए, उसमें जो फीमेल बैकग्राउंड नेपथ्य में जो आवाज आपको सुनाई देती है वो इन्हीं की है। बहरहाल एक और आवाज जो सुनहरे दौर के कई गीतों के साथ भी हम जिनको याद करते हैं, लेकिन ये 1970s का एक गीत अलग आवाज़, ये है लता मंगेशकर के साथ उनका एक युगल गीत। तो पहचानिए इस आवाज़ को।

जी हाँ, ये आवाज़ थी मीनू पुरुषोत्तम की। और अगर आप सुनहरे दौर के गीत सुनते होंगे तो आपने ज़रूर पहचाना होगा इन्हें और इनकी आवाज़ को। बहरहाल छोड़े जाती हूँ एक आखिरी जो आवाज़ है, जो मतलब गाने तो हम इनके सुनते हैं जो बहुत ही मशहूर है, लेकिन शायद आवाज़ पहचानते नहीं, यानी नाम पहचानते नहीं गायिका की का। और ये जो गीत है इस फिल्म का, ये गीत भी कम ही बजता है और गीत भी बहुत खूबसूरत है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। 1 बजे, जैसे कि आप जानते हैं, मराठी में समाचार होंगे और 1:05 पर हिट एंड हॉट में मैं होंगी फिर से आपके साथ, आप ही के पसंदीदा गीतों को लेकर। और आज उम्मीद करती हूँ मेरी ये जो कोशिश है ये आपको अच्छी लगी होगी, और आपने जो सहभागिता की और कई श्रोताओं ने सुनकर हमें सही जवाब दिए और कुछ लोगों ने अटकलें भी लगाई, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया। और स्वागत ज़रूर करूँगी अगले शो के लिए, क्योंकि आपके पसंद के

गीत सजेंगे। तो जो आवाजें और आखिरी जो आवाज है वो है हेमंती शुक्ला की, और जो आवाजें आज शामिल हुई वो है रेमो फर्नांडिस, पुष्पा पगधरे, रेशमा, पामेला चोपड़ा, उषा उत्थुप और शिवाजी चट्टोपाध्याय, अनुपमा देश पांडे, मीनू पुरुषोत्तम और आखिरकार ये है आवाज हेमंती शुक्ला की शैलेंद्र सिंह के साथ। फिल्म का नाम चश्मे बद्दूर।

जहाँ कार्यक्रम हिट एंड हॉट लेकर मैं हूँ आज आपके साथ अनीता। और चलिए निकल पड़ते हैं इस सुरीले सफ़र पर। पहली पसंद है संदीप मक्कड़ जी की, जो कि जालंधर से हमें फरमाइश भेज रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं फिल्म लावारिस का ये गीत मेरे अंगने में। जी अगर आपने गौर किया होगा, इसका जो हर अंतरा है वो एक ही जो है सिमिलर शब्दों से शुरू होता है। और गौर करिए, और अक्सर ये लोकगीतों में होता है, ये लोकगीतों पर आधारित जो गीत होते हैं, और अंग्रेजी में इसे एनाफोरा कहते हैं, यानी जहाँ सारे जो रेपिटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है जहाँ पर शब्दों की। तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

जी हाँ, आपने गौर किया होगा, हर अंतरा जो है जिसकी बीवी उन्हीं शब्दों से शुरू होता है। बहरहाल चलते हैं अगली पसंद की ओर। ये है अशोक पाटिल जी वरली से, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म अनजाना का गीत रिमझिम के गीत सावन गाए। तो लीजिए अशोक जी, आपकी पसंद का ये गीत।

अगली जो पेशकश है वो है फिल्म दो बदन का गीत। पसंद है सुनील पाठक जी की, जो जगराओं पंजाब से हमें ये फरमाइश भेज रहे हैं। तो लीजिए सुनील जी, आपकी पसंद का ये गीत।

थी, जी हाँ कर्मा। और आज भी जब देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की बात होती है, उस रस से, वीर रस से ओतप्रोत गीतों की बात होती है, तो इस फिल्म के इस गीत का जरूर जिक्र होता है। तो सुनते हैं हम इस गीत को, हम और आप मिलकर, और मजा लेते हैं। और वैसे भी 15 अगस्त आने ही वाला है और उस दिन तो ये गीत बहुत अधिक गूंजता है। खैर, हम भारतीयों के दिलों में तो ये हमेशा ही समाया रहता है।

जहाँ फिल्म कर्मा का वो भाव विभोर कर देने वाला गीत, और अगर आपने गौर किया होगा ये भी सुभाष घई की फिल्म जहाँ हीरो में उन्होंने फ्लूट का इस्तेमाल किया, वो एक पीस जो हमेशा बजती है, यहाँ पर बुलबुल तरंग का इस गीत में भी प्रयोग है। आप स्टेज पे जो ये फिल्माया गया है ये गीत, इसे देखेंगे तो बुलबुल तरंग जो वाद्य यंत्र है वो आपको दिखाई देगा। बहरहाल चलते हैं अगली पसंद की ओर। ये है शुभ लक्ष्मी जी की पसंद का एक बहुत ही पुराने फिल्म का गीत, जहां बचपन के दिनों को याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसे भुलाना नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम भी इत्तेफाक रखते हैं।

अगली जो पसंद है वो है फिरोज सिगनपुरिया जी की मुंबई से, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म पाकीज़ा का ये सदाबहार गीत। और गौर करिएगा कि रफ़ी साहब बहुत अधिक नहीं गाते इस गीत में, फिर भी उनकी आवाज़ का जादू लता जी की आवाज़ के साथ आपको सम्मोहित कर देगी। वो सिर्फ चांद के पार चलो चलो दिलदार चलो यानी सिर्फ मुखड़ा गाते हैं, बहुत अधिक अंतरे में तो उनका कोई खास शिरकत नहीं है उनके, लेकिन उसी में वो इतना कमाल कर जाते हैं।

स्वागत है आपका एक बार फिर से हिट एंड हॉट कार्यक्रम में, जहां पर आप ही के पसंद के गीत सुनवाए जाते हैं। और अगली जो पेशकश होगी वो होगी राकेश माथुर जी की पसंद का गीत। ये पुणे से हमें लिख रहे हैं और एक ऐसे खूबसूरत गीत की फरमाइश इन्होंने की है जो फिल्म में तो शामिल नहीं हुई, लेकिन अगर ओपी नैयर साहब के बेहतरीन गीतों में से चुनना होगा तो इसे शायद नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ, जब प्यार में हद से ज़्यादा भरोसा हो जाता है तो शायद ऐसे ही कहते हैं। अब आप सोचिए और आप करिए आपको क्या करना है, हमें तो आप पे पूरा भरोसा है। बहरहाल चलते हैं अगली पसंद की ओर। अश्विन पाटिल जी मुंबई से सुनना चाहते हैं फिल्म परिंदा का ये गीत। तो लीजिए अश्विन जी, आपकी पसंद का गीत।

जी हाँ, फिल्म परिंदा का वो गीत जिसमें पियानो का बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल था। बहरहाल अगली जो पसंद है वो फिल्म जंजीर से सुनना चाह रहे हैं, आशा भोसले की आवाज़ दिल जलों का दिल जला के। तो ये सुनना चाहते हैं अभिजीत गावणकर जी, और ये उमर खेड़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। तो लीजिए सुनिए अभिजीत जी आपकी पसंद का गीत।

अगली जो पसंद है वो प्रमोद चिंचोलकर जी की अकोला से, साथ ही विजेंद्र जी की भी, तो ये सुनना चाह रहे फिल्म हम तुम का गीत। तो लीजिए सुनिए आप दोनों की पसंद का ये गीत।

जी हाँ, बस आखिरी गीत बजने वाला है और कई सारे श्रोताओं की जो फरमाइशें हैं वो शामिल नहीं हो पाई समय की किल्लत के कारण, लेकिन उनके नाम मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। अजय साखरे जी इंदौर से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जी ये भी पंजाब से, स्वर्ण सिंह जी ये भी पंजाब से। तो हमें बड़ी खुशी है कि पंजाब के इतने सारे श्रोता हमसे प्यार करते हैं। और साथ ही है भारती और दुर्गेश नागनपुरी जी जो लिख रहे हैं खंडवा मध्य प्रदेश से, लालगिरी गोस्वामी जी राजस्थान से, मुकेश कश्यप जी ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारा देश मानो मिलकर इस प्रोग्राम को हिट बना रहा है। बहरहाल ये जो आखिरी गीत है ये फरमाइश जिन्होंने की है उनका मैं नाम आखिर में अनाउंस करूँगी। ये फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का गीत है और इसी के साथ मुझे यानी अनीता को इजाज़त दीजिए, दोबारा फिर ज़रूर मुलाकात होगी। और जैसे कि आप जानते हैं 2 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद हिंदी में समाचार, दोनों हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

ये है अमित भगत जी की फरमाइश, ये फरमाइश भेज रहे मालेगांव से। तो अमित जी, आपकी पसंद का ये गीत, और साथ ही अगर किन्हीं के नाम छूट गए हों हमसे तो हमें क्षमा करें। मुझे एक और नाम दिख रहा है, दिग्दर्शन और कविता जी का, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत की उन्होंने शिरकत की। बहरहाल मुझे यानी अनीता को इजाज़त दीजिए, फिर कभी ज़रूर मुलाकात होगी।

अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
1: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा

0: और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हिल पर हिला तुझे कप्पा लीला ठिला आगो हिल हिल पर हिला तुझे कप्पा लीला ठिला तुझे कप्पा लीला ठिला तुझे कप्पा लीला ठिला गो फैशन मराठी।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस जोरदार गाने के साथ, अरिजीत सिंह की आवाज़।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 5:08 हो चुके हैं. सबसे पहला गीत सुनने के बाद एक कहते हैं ना कि मन में एक अंदाज लगाते कि ये महफिल शाम कैसे होने वाली है. तो आप ये मान के चलिए यकीनन शाम बहुत अच्छी होगी, खुशगवार होगी जब गाने प्यारे प्यारे चलते हैं. और मैं कुछ ऐसी बात भी करूंगा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होगी. आप सोचेंगे कि यार बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में जो मिस करते हैं और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन आपने समय के हिसाब से, समय के परिवर्तन के हिसाब से बहुत कुछ चेंज आ चुका है. तो बेसिकली मैं बात करूँगा मिसिंग द मिस्ट्री ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड चार्म इन टुडेज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड एरा. अर्थात जो दुनिया मोबाइल फ़ोन के पहले, इंटरनेट के पहले होती थी, वो पीढ़ी तभी भी थी, आज भी है. तो मैं किसी जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के दौर में जिससे सभी प्रभावित है, किसी भी पीढ़ी के लोग हों, लेकिन आज के ज़माने में, आज के दौर में उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है. लेकिन जिन लोगों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया है उनको नहीं पता चलता. लेकिन जो दोनों दुनिया जी रहे हैं, पहले की दुनिया जी चुके हैं और आज की दुनिया भी जी रहे हैं, तो जब कभी वो पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद आती है और बहुत कुछ मिस करते हैं, जिसका जिक्र हम हौले हौले कार्यक्रम के दौरान करते जाएंगे. 107.1 मेगाहर्ट्ज. अपने ख्यालात आप पेश कर सकते हैं 8657661071 पर, 8657661071. मैं आपका दोस्त शिव कुमार लेकर पेश हूँ कार्यक्रम लव यू जिंदगी.

यही जो गाने की एंडिंग है ना क्यूट सी, वो बहुत सारे चैनलों में आप सुनते ही नहीं क्योंकि गाने को काट दिया जाता है। ये चीज़ आपको सिर्फ सुनाई पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो में 107.1 मेगाहर्ट्ज़। किसी भी गाने की आत्मा आगे पीछे से बिल्कुल काटी नहीं जाती, गाना पूरा का पूरा आपको सुनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। लव यू जिंदगी शिव के साथ आप लोग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे थे ओल्ड वर्ल्ड जैम के बारे में। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको बताते जाऊंगा जो आपको अचानक लगेगा हाँ यार ये बात तो था, ये बात आज मिसिंग क्यों है। और उन बहुत सारी बातों में दोस्तों बहुत सारी बातों का बहुत सारा निचोड़ है। क्या होता है कि एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, जब पहले हम चाहे 90s का दौर था जब 97 में फ़ोन आने के पहले की बात थी, आपने कोई प्रोग्राम एक दिन पहले बताया। आप सोचिए आज की जनरेशन को कल्पना नहीं कर पाती कि मान लीजिए आप लोग सब मिले हैं और प्रोग्राम बनाते, दो दिन बाद इतने बजे यहाँ मिलने वाले हैं और आप चाहे स्कूल में रोज़ नहीं मिल रहे हैं या कामकाजी जगह पर रोज़ नहीं मिल रहे हैं, किसी से घर पर लैंडलाइन फ़ोन होता था, आपने प्रोग्राम बना दिया और लोग पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद कभी कभी लगता है शायद कोई आएगा कोई नहीं आएगा, वो एक अलग एक्साइटमेंट थी। प्रोग्राम बना दिया है, लॉक हो चुका है, दो दिन बाद सब लोग वहाँ नजर आने वाले। एक आध बार कभी कोई नहीं आया और पहले इन्फॉर्म कर पाया लैंडलाइन फ़ोन से, लैंडलाइन फ़ोन के जरिए तो अलग बात थी, अपनी तरह नहीं कि किसी ने पिंग कर दिया, पिंग व्हेन यू लीव, कहाँ तक पहुँचे हो, आपने अपने लोकेशन भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। और उस ज़माने में आपने प्रोग्राम बना दिया तो आप हैरान हो जाएंगे कि 99% प्रोग्राम सेट होते थे, टाइम पे लोग आते थे और लास्ट मिनट पे मोबाइल फ़ोन नहीं होता था बोल के या कारण बताने के लिए, आई एम सो सॉरी समथिंग इंपॉर्टेंट केम अप लास्ट मिनट। पहुंचना है तो पहुंचना है क्योंकि आप उसको बता कैसे पाएंगे, यानी कि वो जो एक ट्रस्ट लेवल सब चलता था, बातें होती थी, अब अचानक में इतना ये हो गया कि हम ऑन गोइंग कभी भी कहीं भी गाड़ी की स्टीयरिंग कहीं पर भी मोड़ सकते हैं। जो सुविधा है ना वो कहीं कहीं विलन बन जाती है। 5:20 हो गया है, सुखेंद्र सिंह की आवाज़ में फिल्म का नाम

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
3: वेलकम बैक दोस्तों, 5:31 और 21 सेकंड हो चुके हैं। सुनिधि चौहान और कृष्णा की आवाज में आपने अभी भी सुना दीदार दी। फिल्म का नाम 10, एक से बढ़कर एक गाने इस फिल्म में, मौका मिलेगा तो और भी सुनाएंगे। अगला की सुनाने के पहले बस ये कह देना चाहता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि ओल्ड वर्ल्ड चार्म के बारे में, तो जब आप आज किसी को फ़ोन लगाते हैं, मोबाइल भी लगाते हैं, नेचुरली लगाते हैं और सामने वाला उठा देता है, लेकिन जिन लोगों ने वो दौर भी देखा है कि यार फ़ोन लगाना है लैंडलाइन पे, पता नहीं कौन उठाएगा, माँ बाप उठाएंगे तो हाँ बोलना है, ना बोलना है, काट देना है, कॉलर आईडी नाम की चीज़ उस टाइम पे बहुत देरी से आई थी और उसकी अलग से फीस लगती थी, तो हर इंसान उसको CLI कहते थे, कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन नहीं लेता था। फिर उस तरह का एक डिब्बा यानी कि हैंडसेट लेना पड़ता था टेलीफोन का, जिसमें कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन होता था कि ये फ़ोन यहाँ से आ रहा है, अदरवाइज पता ही नहीं चलता था फ़ोन कहाँ से आ रहा है। यानी कि अपनी पसंद की आवाज़ अगर आपने नहीं सुनी तो फ़ोन को काट दिया। ये एक अलग जाम होता था, एक अलग दुनिया होती थी और कभी कभी आपको पता नहीं चलता था कि सामने कौन बैठा और आप हेलो उठा लेते थे। जिनसे बात करने से तो बात कर रहे हो लेकिन उनके सामने माँ बाप या कोई और हैं और उनका जवाब बड़ा फॉर्मल सा होता था और यहाँ बैठे बैठे आप अंदाजा लगाते थे क्या पहचाना नहीं मुझे, ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो बहुत कुछ होता था इन छोटी छोटी चीज़ों का, जो एक अलग मज़ा था जो अब कैसे बयां करें और कितने लोग समझ पाते हैं कितने नहीं समझ पाते हैं। और भी ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें आपको डे टू डे नज़र आती जाएंगी। फिलहाल आपको हम सुनाते हैं एक और जोरदार गीत सुनिधि और नीरज चौहान की आवाज में।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: बेनी दयाल और शर्मली कोलगड़ी की आवाज में आपने सुना रेस फिल्म का गीत लत लग गई। ओल्ड वर्ल्ड चार्म के बारे में इतनी सारी बातें, किसे कहें, क्या बात को छोड़ें। और ख़ास बात तो ये होती कि जो सबसे बड़ा आज के ज़माने में सबको जो सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है और जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, उसके बिना भी दुनिया चलती थी, उसका नाम है GPS। लोग GPS की जगह जो होता था ना, तभी भी लोग जाते थे, पहुँचते थे, और जब कहीं एक बार जाके आए तो सड़कों पर ध्यान देते थे ताकि अगली बार याद रहे। अभी हमने क्या किया कि मेमोरी को उतना इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, ताकि कहीं जाते हैं आते GPS तो है ना। तो जिस तरह से हम फ़ोन में पहले नंबर्स काफ़ी रिवाइज कर लेते थे, याद कर लेते थे, अब नंबर तो हम फीड करते हैं, तो कभी फ़ोन बैटरी डाउन हो गई, कुछ भी हो गई और किसी दूसरे के फ़ोन से फ़ोन करना है तो भी अटक जाते हैं क्योंकि नंबर याद नहीं है। इनफैक्ट बहुत क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स तक के भी हम याद नहीं रखते हैं। और पहले जब कहीं जाना होता था तो बहुत सारे लाइव GPS होते थे, कहीं ना कहीं अटकते थे, कोई ना कोई रास्ता बताता ही था और पहले ही पूछ के चले आते थे। और जब वो डायरेक्शन देते थे, आगे जाके दाएं मुड़ जाना, दाएं जाके बाएं होना, और बाएं जाके फिर सीधे जाके फिर वहाँ जो अगला टर्न आएगा वहाँ राइट लेना, लोग उतना याद भी कर लेते थे। क्या उसने कहा समझ जाते थे। बाजू में कभी कभी गाड़ी में बैठे लोग कहते थे, उसने क्या बोला समझ में आ गया, हाँ आ गया। तो जो ड्राइविंग सीट पर बैठता है वो बेहतर समझ जाता है। लोगों से कम्युनिकेट करने का एक अलग अदा होती थी, काफ़ी लोग बातचीत किया करते थे, अपने आप में ही नहीं रहते थे क्योंकि सब कुछ अपने आप में फ़ोन हो गया है, चाहे दोस्त भी हो गया, साथी भी हो गया। यहाँ तक कि जब लोग सोलो ट्रैवल के नाम पर, लोग कहते मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो किसी चीज़ को देख के ख्यालत में नहीं रहते हैं, उसके बदले फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो आप अपने आप को स्टेटस पे आने ही नहीं देते कि मैं सच में सोलो हूँ। और अगर दो चार लोग बैठे हैं बिना फ़ोन के, आप देखेंगे सभी लोगों के हाथ में फ़ोन है, कोई ये तक नहीं बताना चाहता है, दिखाना चाहता कि मैं खाली हूँ, बिना फ़ोन के भी बैठ सकता हूँ। अपने आप के साथ बिना फ़ोन के समय बिताना भी एक अलग कला है, एक अलग बात है जो लोग भूल चुके हैं या जिनको पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है क्या। खैर, एक और गीत खास सुनाते हैं आपको, लेकिन उस गीत के पहले मैं एक अलग ही जोरदार गाना सुनना चाहता हूँ, वसुंधरा दास की आवाज़ है, फिल्म का नाम है अक्स। अगर आप लोगों को याद हो तो बच्चन साहब थे, मनोज वाजपेयी जी थे, बहुत अलग कमाल की फिल्म थी।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: एक और बात याद आ गई कि आज के जमाने जब हम प्लान्स बनाते हैं, गेट टुगेदर हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, जो भी हो, उस प्लान के लिए एक एवरेज अगर आप सोचते होंगे तो कितने व्हाट्सएप मैसेजेस का आदान प्रदान होता होगा। मान लीजिए 5-10 लोग हैं और किसी ने अगर रात को प्लान बन रहा है और वो बंदा किसी एक ने मिस कर दिया सारे मैसेजेस और सुबह उठ के देखता है तो लगता है भूचाल सा गया कि भाई हुआ क्या है, 200-300 मिस्ड मैसेजेस, इतने सारे पेंडिंग। और जब पूरे मैसेज से वो जाता है, बाप रे बाप, 250 मैसेज का जब सार निकालता है तो मालूम पड़ता प्रोग्राम अभी फाइनल नहीं हुआ, ना जगह फाइनल हुआ, ना टाइमिंग फाइनल हुआ। तो इन हालात में पहले के ज़माने में कैसे जब प्रोग्राम बनते थे, एक चीज़ डिसाइड हो जाती थी, बहुत जल्दी लोग किसी न किसी निष्कर्ष पर निकल आते थे। और चूंकि आज के दौर में इसलिए भी नहीं निकल पाता है क्योंकि वो लोगों को भी जो प्लान बनाने जा रहे हैं उनको भी पता है कि लास्ट मिनट पे वो भी किसी के डिस्पोजल पे, उन्हें भी कहीं जाना पड़ सकता है ज़रूरत के हिसाब से, इसलिए चीज़ें बनते बनते रह जाती और नहीं बन पाती। और आपको हैरानी होती कि यार एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने में इतना अरसा क्यों लगता है। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से उलझनों में बांध लिया है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप अकेले एज ए सोलो ट्रैवलर भी जा रहे हो, लोग सोलो ट्रैवल करते हैं ताकि वो अपने हिसाब से आ सके, जा सके, चीज़ों को निहार सके, उसे फील कर सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के। लेकिन जब वो डिस्टर्बेंस एक फ़ोन के रूप में भी आपके साथ होता है, चाहे काम के ज़रिए, चाहे लोगों के कनेक्शन के ज़रिए, आप अपने आप में हो नहीं पाते, उसके लिए बहुत ही अलग डिसिप्लिन लगता है। अब जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने सेलफोन ऑफ करके बात नहीं की, प्रोग्राम नहीं की, तो उस कंसंट्रेशन से ना काम हो पाएगा ना प्रोग्राम हो पाएगा। क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ में तल्लीन होकर काम करते हो तो उसका जाहिर रिजल्ट बहुत अलग आता है। कोई भी चीज़ में अगर आप पैशनेट हो तो भी इसका रिजल्ट अलग आता है। अदरवाइज़ ये भी करते करते, मल्टीटास्किंग करते करते करते रूटीन काम ही होता है। और जो सबसे कीमती चीज़ है ज़िंदगी में वो है समय, ऐसे ही चला जाता है। तो ना क्वालिटी टाइम किसी को दे पाते हो, ना क्वालिटी टाइम ले पाते हो। ज़िंदगी से क्या चाहिए वो आपको खुद तय करना है।

जाते थे इन तेज तरार गानों के बीच में इस कार्यक्रम में, यानी कि जो पहला हिस्सा है लव यू जिंदगी का, उसे समाप्त करने के पहले मैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज में सुनाते हुए जाऊंगा, और वो गीत है फिल्म लापता लेडीज का सजनी वे। उसके बाद 6 बजे समाचार, उसके बाद हम लेकर अगला हिस्सा पेश होंगे, कुछ और हमारे आपकी बातें भी करते जाएंगे, कुछ ये कुछ वो, लेकिन सुनते 107.1 मेगाहर्ट्ज़ अपने साथी शिव के साथ बने रहिए, यहीं पर होता है मोर बजाना लेस पकाना, सुनाते हैं गाने पे गाना।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 6:15 और 54 सेकंड हो चुके हैं। आप अपने साथी शिव कुमार सिंह के साथ और ये वक्त हो चला है ठहराव का, यानी अंदाजे बयां का। सैटरडे इवनिंग वैसे मूड कुछ और होता है। आपको लगता है कि जो लोग खासतौर से कॉरपोरेट जगत को बिलोंग करते, जो काम करते हैं, जिन्हें 2 दिन छुट्टियां मिलती हैं, और कल मैं एक बंदी से कह रहा था कि मंडे टू फ्राइडे जब हम काम करते हैं, हमें शायद इतना निचोड़ लेते हैं। कहने को तो आपको लगता है कि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है। अक्सर लोग आते हैं 10 बजे आते हैं, 7 बजे जाते हैं, 9 बजे आते हैं, 6 बजे जाते हैं, यानी जो टेक्निकली 9 घंटे का काम होता है। हालांकि हम देरी से आए, 15-20 मिनट भी, तो भाई 2-3 बार अगर देर हो गई तो हमारी छुट्टी लग जाती है, आधी एक जो भी है, लेकिन रोज़ 2 घंटे 3 घंटे काम करते हैं, शाम को जाते हैं, उसकी गिनती नहीं होती। जब उन्होंने जोड़ घटा किया सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, हम जो 2-2, 3-3 घंटा एक्स्ट्रा डालते हैं इन 5 दिनों में, वो लगभग 14-15 घंटे हो जाते हैं। और शनिवार की छुट्टी मिलती है, उस पर भी हम लोग ऑन रहते हैं, मेल वेल जवाब देते हैं, सब कुछ काम करते हैं, तो ये एक शहरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यानी कि शनिवार के दिन इतनी ज़्यादा उम्मीद होती है फ्राइडे नाइट और सैटरडे से। फ्राइडे नाइट तो भाई हिम्मत पस्त हो जाती, क्योंकि काम करते रहते हैं और दिन ख़त्म बहुत देरी से करते हैं। सैटरडे फ्रेश होकर उठते हैं, काम करें कि आराम करें कि दोस्तों से मिलें कि पार्टी मनाए, क्या करें, और बैक ऑफ माइंड में रहता है मंडे, ये सब बाकी है। इन जद्दोजहद के बीच में हम कुछ गाने, कुछ ठहराव वाले गज़लें पेश करके कोशिश करते हैं कि आपके उस कहते हैं ना टेम्परेचर को मेलो डाउन किया जाए, जो बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलते रहता है। तेज रफ्तार जिंदगी, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आगाज करते हैं जगदीश सिंह साहब की आवाज़ से।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आशा भोसले कुमार सानू की आवाज में आपने सुना किसी मेहरबान ने आके. 6:30 हो चुके हैं और जब हम बात पिछले घंटे में जो कर रहे थे और वो था कि ओल्ड वर्ल्ड जाम जो धीरे धीरे मिसिंग होता जा रहा है, उसमें एक और बात खास मुझे याद आई कि पहले जब हम कहीं किसी चाहे कमर्शियल काम से मिलते थे या पर्सनल लाइफ में किसी से मिलते थे तो उनसे मिलने के पहले हम उनके बारे में लिटरली कुछ भी नहीं जानते थे. मतलब आज अगर हमने किसी का नाम ले लिया, उसे टाइप कर देते, गूगल कर लेते, उसके बारे में उसकी पूरी कुंडली निकाल लेते मिलने के पहले, अपने हिसाब से ओपिनियन भी फॉर्म कर लेते. भाई हम ना भी कहें लेकिन हो ही जाता है कि कौन क्या करता है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स हैबिट, उसका ये कहते हैं ना कि माली हालत से लेके उसकी लाइफस्टाइल से लेके हर चीज़ हम पता कर लेते हैं. और पहले होता था कि मिलने के बाद हम अपने हिसाब से सोचते थे, एनालाइज करते थे, बात बनेगी नहीं बनेगी, चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे कॉर्पोरेट लाइफ में, जो भी हो. तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो इतना ज़्यादा बदलाव आ गया. मैं तो एक और चीज़ सोचता हूँ कि कम से कम जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं लेते हैं, लोग यहाँ तक करने लगे कि भाई अगर कोई चीज़ मिल गई तो तुरंत उसको जाकर बराबर इंटरनेट

के जरिए उसका प्राइस पता कर लेते थे कितने में ली होगी, ताकि कोई चीज़ की नॉवेल्टी छूटने ना पाए, पता ना चलने पाए कि कोई इंसान को ये ना पता चले कि भाई ये कितने का गिफ्ट था, मतलब किसी भी चीज़ का वो रह नहीं गया। इसलिए हम बहुत सारी कहते हैं ना कि जब जिंदगी को पीछे की तरफ जाते हैं, और ख़ासतौर से जब आप बाहर से निकल के दूसरी दुनिया में जाते हैं, बहुत सारे देशों में जाते हैं, ख़ासतौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, आज भी वो मानते हैं कि काम ज़िंदगी का 30-40% हिस्सा है, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। हमने काम को बहुत ज़्यादा ही तवज्जो दे के रखी हुई है, अपने पर्सनल वेलबींग के बारे में, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम, खुद के शौक़ को एकदम ज़ीरो कर दिया है। कौन से वर्किंग आवर्स है, कौन से आपके पर्सनल आवर्स है, उसमें कोई गैप रह नहीं गया। तो जब आप कभी ट्रैवल करते हैं, इसके लोग कहते हैं कि जितना आप यात्रा करेंगे उतना अलग अलग आप लोगों को जब नज़रिया मालूम पड़ता है, बहुत अलग पर्सपेक्टिव होते हैं ज़िंदगी के, लोगों के ज़िंदगी जीने के तरीके होते हैं। हमारी जो जल्दबाजी है ना, वो आपको वहाँ नज़र नहीं आएगी। हर इंसान बहुत गफलत में है, जल्दबाजी में है, यहाँ वहाँ पहुँचने के लिए परेशान है, उसकी चाल भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में रहता है, और वो अगर खड़ा भी है तो अपने आप में ठहराव के साथ नहीं, अंदर बहुत कुछ चलते रहता है। धीरे धीरे ज़रा उसको कंट्रोल करते लाइए, एंड किसी से कोई रेस नहीं आपकी। अगर आपको लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें पाकर किसी की ज़िंदगी और बेहतर और अच्छी हो जाएगी, तो गलतफहमी में है। आपको पता होना चाहिए आप चाहते क्या हैं, जो आप चाहते हैं, जिस ढंग से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उस ढंग से अगर आप ज़िंदगी जी सकते हैं, तो सही मायने में आप अमीर हैं और आपने बहुत कुछ पा लिया। इसी में विशाल ददलानी का एक गीत मुझे याद आ रहा है, जी ले जरा मैं वो सुनाता हूँ, उसके बाद आपको सुनाऊंगा अंग्रेज़।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 6:43:47 हो चुके हैं 107.1 MHz, अपने साथी शिव के साथ अब बने हुए कार्यक्रम चल रहा है अंदाज़े बयां। अगली आवाज है अरिजीत सिंह जी की, बाजीराव मस्तानी में उन्होंने ये गीत गाया था आयात। संजय मसाली जी कह रहे थे कि ये एक अलग अंदाज का एक अलग राग वाला गीत था, और जब बहुत कुछ डिस्कशन करने के बाद तय किया गया, अरिजीत सिंह जी को लगा कि ये गीत सुबह के पहर यानी 4 बजे गाऊंगा तो मैं वो डिजायर्ड इफेक्ट और डिजायर्ड जो चाहता हूँ इम्पैक्ट वो मैं मिलेगा मुझे, इसलिए उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग सुबह 4 बजे रखी और उस दौरान ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि बहुत दीख से हटकर गाना था, बहुत कुछ था इसमें। तब इस गाने को आप सुनेंगे, आपको उनका अंदाज ही बहुत अलग नज़र आएगा। तो जब कोई फनकार बहुत बड़ा होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे की जो मेहनत लगी रहती है लोग अक्सर वो भूल जाते हैं, और लगातार कहते हैं ना कि लगातार अपने हुनर को तराशना इतना ज़रूरी, इंसान को लगता है बस अब मैं पहुंच गया हूं, लेकिन उसके बावजूद लगातार तराशते रहिए तो ही आपको मकाम मिल पाता है जो आज उन्हें मकाम मिला। इस गीत के बाद मुझे लगता है कार्यक्रम के अंत में जो गीत आपको सुनाऊंगा वो है रेखा भारद्वाज और जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में तेरी फरियाद। ये गाना जो इमोशंस लिए हुए हैं वाकई आपको अपने अंदर बाहर ले जाता है। 7 बजे होंगे समाचार और 7:10 से हम आपके सामने फिर से पेश खिदमत होंगे लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम। 8657-661071 इस पर आप अपनी राय फिलहाल दे सकते हैं और फरमाइशी गीत 7:10 के बाद आप दे सकते हैं। आयात

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 7:11 हो चुके हैं। आप सुन रहे अपने साथी शिव के साथ, कार्यक्रम चल रहा है हम तुम, और हम तुम में आपके पसंदीदा गीत, इसकी लंबी फेहरिस्त ऑलरेडी एडवांस में लग चुकी है हमारे फोन नंबर 8657-66107 के भी जरिए। सबसे पहले फरमाइश आइए, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। राकेश माथुर पूना से, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है। राकेश माथुर जी, सबसे पहले आपकी फरमाइश से इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: अगली जो पेशकश है हम करने जा रहे हैं, बहुत अलग पेशकश है, एक अलग ज़माने का गीत है, लेकिन वो इसलिए भी ख़ास है क्योंकि एक हमारे बहुत बड़े मशहूर कलाकार दिनेश ठाकुर जी की जयंती है और उनका बहुत बड़ा योगदान थिएटर में रहा है। और एक उनकी आज जो जयंती के उपलक्ष्य में हमारे एक श्रोता चाहते हैं कि हम उनका गाना प्ले करें और वो है संजय पाटिल जी मलकापुर से। और एक फिल्म आई थी 1971 में मेरे अपने, जिसमें संजय अपने दिनेश ठाकुर जी भी थे, उन्होंने भी किरदार निभाया था। जब इस गाने के बोल सुनेंगे ना, आपको लगता है कि 1971 में लिखे बोल 2026 में भी प्रासंगिक हैं। तो मैं चाहूँगा उनके इस गीत को सुनाऊँ और गीत के बोल आवाज़ है मुकेश कुमार और किशोर, मुकेश जी और किशोर कुमार की। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। आप सुनिएगा इस गाने को और उनके साथ साथ मलकापुर में संजय पाटिल जी से सौभाग्यवती उषा पाटिल जी, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर और संजय चौहान जी, ये सभी लोग मिलकर ये गाने को सुनना चाहते हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको हम ये गीत सुनवा रहे हैं 8657661071। और उसके बाद एक गज़ल की पेशकश भी आई है, फरमाइश आई है, जो जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में उस मोड़ से शुरू करें। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं हाल चाल ठीक ठाक है।

0: Swahili FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: इस फरमाइश में शामिल थे धूम लता, मुंबई से लता ने फरमाइश की थी, और हितेंद्र दास जी जो असम से सुनते हैं वो भी सुनना चाहते थे गीत। और जो अगली फरमाइशें हैं, एक सबसे पहले हैं यवतमाल से, और यवतमाल से सुरेश पटजवार और कुमारी शीला पटजवार सुनना चाहते फूल और कांटे का गीत पहली बारिश में अर्थ हूँ, क्योंकि वो कह रहे कि यवतमाल में आसपास पे घनघोर बरसात हो रही है और आपके गज़ल भी अच्छे लग रहे हैं, गीत भी अच्छे लग रहे हैं, और ये गाना अगर आप हमारे परिवार को सुना देंगे तो सोने पे सुहागा। तो सुरेश कुमार जी और साथ ही कुमारी चंदा शीला पटजवार जी और परिवार, आपके लिए गीत मुंबई से जा रहा है। और साथ ही साथ प्राची शिंदे मुंबई से, जो उन्होंने पहली बार फरमाइश की है और वो भी सुनना चाहती हैं परदेस फिल्म का गीत जहाँ पिया वहाँ मैं, चित्रा और शंकर महादेवन की आवाज़ में। और एक और बात प्राची जी ने कही कि आप हमेशा नए श्रोताओं के गीत सुनाते हैं, अच्छा लगता है, रेडियो से हर एक प्यार करता है, सबको रेडियो अपना लगना चाहिए। बिल्कुल आपने जो कहा प्राची जी, हमारी कोशिश यही होती है, इसलिए जितने हमारे पुराने रेगुलर लिसनर्स हैं, जब उनकी बहुत सारी फरमाइशें पेंडिंग हो जाती है हफ्ते दिनों महीनों से, तो हम भी कहते हैं कि भाई पूरे भारतवर्ष से पूरी दुनिया से लोग सुनना चाहते हैं, उन्हें भी अपनापन लगता है जब उनका नाम पुकारा जाता है, उनकी फरमाइशें प्ले की जाती है। इसलिए अगली जो फरमाइश, मैंने जैसे कहा दोनों नाम, एक मुंबई से और एक यवतमाल से, तो जो रेडियो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए हमसे जुड़ते हैं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 7:35 और 7 सेकंड हो चुके हैं और इसके बाद जो मैं अगला गाना प्ले करने जा रहा हूँ, हमारे एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं जो चेंबूर में रहते हैं मुंबई इलाके में और बहुत से गानों के साथ उनका जुड़ाव रहा है और वो भी बहुत बार जब फरमाइशें करते हैं, लेकिन आज जो बहुत ज़्यादा या बहुत दिनों के बाद अगर नंबर आया है तो मैं चाहूँगा उनका एक पसंद का गाना प्ले करें और वो उनकी पसंद के साथ साथ मेरी पसंद का, फिर बहुत से लोग, और मैं चाहूँगा इस गाने की जब बोल आप सुनेंगे और ख़ासतौर से जो दूसरा वर्स होगा ध्यान से सुनिएगा जो बोल है इस गाने की और किशोर कुमार की आवाज़ में है दोस्तों एंड मजबूर फिल्म से है आदमी जो कहता है और इसकी जो शुरुआत बहुत ही एक अलग अंदाज में है, कभी सोचता हूँ अक्सर से शुरुआत करते हैं। जिसने फिल्म देखी वो जानते हैं कि गाने के मायने क्या हैं, लेकिन जिसने फिल्म नहीं भी देखी तो मैं चाहूँगा कि इस गाने को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद और भी 4-5 फरमाइशें पूरी ज़रूर होंगी और वैसे जहाँ पिया वहाँ मैं ये फरमाइश थी उसकी जगह मैंने ये लगाया, लेकिन वो फरमाइश भी बिल्कुल आएगी प्राची शिंदे जी, आप चिंता मत कीजिएगा। 107.1 मेगाज मैं आपका दोस्त शिव कुमार लेकर पेश हूँ कार्यक्रम हम तुम, यहीं पर होता है मोर बजाना लस पकाना, सुनाते हैं गाने पे गाना।

साथ अपने दोस्त शिव कुमार सिंह को दीजिए इजाजत। फली होंगे आपके साथ 8 से 11 के तक। हर हाल में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। माँ की सेवा सुनते रहे रेनबो 107.8। अगली फरमाइश आए दिल है मुश्किल, ये फरमाइश है अनिकेत की मुंबई परेल से।

0: That's a bit of Lobo over there with I'd Love You to Want Me. It's one of the 10 best-selling songs of the 1970s. Do you know that? It went to number one in 29 countries. Playing you the debut of Lobo. The album was called Introducing Lobo. What an album. Don't you agree with me? Keep listening to the number one radio station in Amchi, Mumbai. That's Akashwani's Rainbow Channel. And let me tell you, coming up right now is the news in Hindi at 8:45, followed by the news in English at 9 p.m. We'll be back at 9:15. Keep listening in.
1: म्यूजिक घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
3: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
3: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

0: मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है, जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
2: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही

0: ग्यारहवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
1: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी संपन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
3: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian president says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face China's Che Han in women's singles final of Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
5: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
4: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit.
5: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
4: Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Banerjee were also present in the ceremony. On the occasion, the Prime Minister inaugurated a high-performance computing facility, Param Pragya, at IIT Delhi. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Navkranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation, NUCFDC, and the National Forensic Sciences University signed a memorandum of understanding in the presence of Mr. Shah. The Home Minister highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Science University in tackling cyber and financial crimes.
6: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU
7: टुडे एन अग्रीमेंट वॉज

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने

0: जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुछ रह जाने का, कुछ छूट जाने का मलाल तो रहता है, पर क्या कीजिए, जिसे रह जाना है उसे रह जाना है, तो उसकी यादों को समेट कर आगे बढ़ जाना ही अच्छा है। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो।

0: एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविदा हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफ़र में। तेरे आने की क्या उम्मीद, मगर कैसे कह दूँ कि इंतज़ार नहीं।

इंतजार किसी के लौट आने का, किसी के इकरारनामे का। मोहब्बत में ये रंग भी खूब है, कितने ख्वाब बुनता है दिल एक मुलाकात के लिए, कितने बहाने ढूंढता है दिल इकरार के लिए, इजहार के लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफ़र में। नहीं हो तुम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर में कर्फ्यू लगा है। कोई बर्बाद होकर जा चुका है, कोई बर्बाद होना चाहता है,

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

102.6 FM दिल से दिल तक, मैं नविता हूँ आपके साथ, दिल से दिल तक के सफर में।

अपने आप को बदलना आसान भी नहीं होता, बस वक्त के साथ थोड़ा हेर फेर करना होता है। अगर ज़रूरत हो तो उग्र बनो ऊपरी तौर पर, लेकिन हमेशा नरम रहो अपने दिल में। अगर ज़रूरत हो तो फुफकारो पर डसो मत, दिल में प्यार को जिंदा रखो और लड़ते रहो ऊपरी तौर पर। यही जिंदगी का फलसफा है ना? और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

आधी रात के 12 बज चुके हैं और एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है और एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। आधी रात के 12:02 हो चुके हैं और अब शुरू होता है जीरो आवर शो, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। तो बस नॉन स्टॉप गानों की धुन में आप ऐसे ही गानों का मजा लीजिए, एक के बाद एक गानों की लड़ी चलती रहेगी। तो बस गानों की दुनिया में खो जाइए और स्टार्टिंग करते हैं कॉकटेल 2 मूवी से प्रीतम और अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: उनके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की

0: सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

कुमार राठौड़ की आवाज में आपने तक्षक मूवी से ये गाना सुना। जीरो आर शो सुन रहे हैं आप। रात के 12:33 हो चुके हैं और ऐसे ही आप नॉनस्टॉप गाने सुनते रहिए और गानों के बीट्स पर झूमते रहिए।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

बातों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

अभी आप सुन रहे थे जस्मिन सैंडलेस और सतिंदर सरताज की आवाज में फ्रॉम द मूवी धुरंधर से ये गाना। और रात के 12:57 हो चुके हैं। जीरो आर शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक आप सुन रहे हैं और इस शो का ये आखिरी गाना फ्रॉम द मूवी आई आर ए सुनीति चौहान की आवाज में।

रात्रि के 1:01 हैं और अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी विंस ने फोन पर दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। और एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार। कोयल।

आधी रात के 1:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब शुरू होता है सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे कुछ 90s के गाने और कुछ नए गाने यानी सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स। आप मजा लेंगे इनका, वो भी नॉन स्टॉप। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं, उदित नारायण की आवाज में इस गाने के साथ।

0: Boya si teri boli.
1: आए हाय,
0: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: रिकॉर्ड किया नहीं है।
1: ठीक है,
0: आपको बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्जा।

बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर रात के 1:50 हुए हैं। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक शो है सुहानी रात, और ऐसे ही गानों का आप मजा लेते रहिए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं सुहानी रात शो नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक, जिसमें कुछ म्यूजिक आप सुन रहे हैं 90s का। रात के 1:55 हो चुके हैं और अब इस शो का ये आखिरी गाना फ्रॉम द मूवी हम हो गए आपके।

रात्रि के 2 बज चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन पर दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है और एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक और स्वर्ण और एक रजत पदक जीते हैं। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। रात के 2:03 हो चुके हैं। आज रविवार है और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भुलाए ना बने, जिसमें नॉन स्टॉप गानों का आप मजा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में बर्फी फिल्म के इस गाने के साथ, और ऐसे ही गानों की लड़ी चलती रहेगी। आप गानों की दुनिया में खो जाइए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

अलका याग्निक और कमाल खान की आवाज में ये गाना था फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया। और आप सुन रहे हैं भुलाई ना बने शो में नॉनस्टॉप गाने और रात के 2:43 हो चुके हैं और आप सुनिए तक्षक मूवी का ये गाना सुजाता त्रिवेदी।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे थे भुलाए ना अपने शो, जिसमें आप वो गाने सुन रहे थे जो आप किसी टाइम पे सुनते थे, भूल चुके थे, लेकिन उन गानों का आप दोबारा मजा ले रहे हैं। रात के 2:58 हो चुके हैं और अब ये शो अभी पूरा होता है।

रात्रि के 3 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन पर बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार ने की अगले दौर की वार्ता आज दोपहर 12 बजे होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है और बैडमिंटन में आज आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यूहान से होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों

0: तक खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR खर्चा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने फोन पर बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेपीएससी परीक्षाओं के में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार की अगले दौर की वार्ता आज दोपहर 12 बजे होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेश्कियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। और बैडमिंटन में आज आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यूहान से होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हाँ तो भैया क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।